सचदानंद सतरंग वाराणसी करी मुलंदा सुमस्तल निवासी अजाए बब बुते गजाए बनीमे हरियंग करियंग करी मुल रही में चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते

जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुमराता किरबै सगल दे को हरता दुष्ट दुखियन कुशा करता श्री आ तुजा पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांशत फल पावै सोई दूहनंत साहब आपद कोई अड़ेला सुनै गुंग जो जाहे सुरसना पावई सुनै मूड़ चित लाए चतुरता आवई।

0: रस राते
1: सन समाध नाम रस माते
0: आठ पहरजन हर हर जपे
1: हर का भक्त भगत नहीं छपे
0: हर के भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संकेते तरे
0: हर जाते हर को नाम
1: काम तेन हर हर गुण काम
0: सत्य उत्तम हर की कथा
1: नाम संत दर दुख कथा
0: नाम की महिमा संत हृदय
1: संत प्रताप
0: संत का संग बड़ भागी पाई

0: समझे पूरा।
1: कहां बिसन पद गावे गंग,
0: जतन करे तो पी सर्पंग।
1: पिंगल पर्वत पर पवन,
0: नहीं हो तुआ सगवन।
1: करतार करना मैं दीन बेंती करे,
0: नानक तुमरी कृपा तरे।
1: संग सहाई सो आवे ना चीत,
0: जो बैराई तासो प्रीत।
1: मलुआ के ग्रह पीतर बसे,
0: अंत केल माया रंग रसे।
1: दृढ़ कर माने मने प्रतीत,
0: काल नावे मुड़े चीत।

0: प्रसाद छत्ती अमृत खाहे
1: तिसा कर गौर रख मन माहे
0: प्रसाद सुगंध तन लावे
1: तिसो सिमरत परम गत पावे
0: प्रसाद मुसक बसे सुख मंदर
1: तिसे त्याए सदा मने अंदर
0: प्रसाद ग्रह संग सुख बसना
1: आठ पैर सिमरो तिस रसना
0: प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याए त्यावन जोग
0: प्रसाद पाठ कुटुंबर हंडावे
1: तिसे त्याग तत् वर लुभावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पैर ताका जस गाई जय
0: प्रसाद तू सबको माने
1: मुक्ता को जस रसन बखाने
0: प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मान सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: रब जी जप दर गए मान पावे
1: नानक पासे की कर जावे
0: प्रसाद अरोप कंचन देही
1: लिख लावो तिस राम सनेही
0: प्रसाद तेरा उल्ला रहत
1: मान सुख पावे हर हर जस कहत
0: है प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके
1: मन सानी पर ठाकर प्रभु ताके
0: है प्रसाद तुझको ना पहुंचे
1: मान साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे
0: है प्रसाद पाई दुर्लभ
1: नानक दाजी भगत करे
0: प्रसाद अपूखन पहरी जय
1: मन तिस्मरत को आरस की जय
0: प्रसाद अस हस्त असवारी
1: मन तिस प्रभु को कबू ना विसारी
0: जय प्रसाद बाग मिल्ख तना
1: राख कोई प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठ सच से त्याई
0: से त्याई जो एक अलखे
1: मिया हुआ नानक तेरी रखे
0: जय प्रसाद करे

0: संग मुखुजल होत
1: साध संग मन सगरी खोत
0: साध के संग मिटे अभिमान
1: साध के संग प्रगटे सो ध्यान
0: साध के संग बूझे प्रभ नीरा
1: साध संग सब होत नवेरा
0: साध के संग पाए नाम रतन
1: साध के संग एक पर जतन
0: साध की महिमा वरने कौन प्राणी
1: नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी
0: साध के संग अगोचर मिले
1: साध के संग सदा पर फुले
0: साध के संग आवे बस पंचा
1: साध संग अमृत रस पंचा
0: साध संग होए सब की रेन
1: साध के संग मनोहर बहन
0: साध के संग न कतहु तावे
1: साध संग असत मन पावे
0: साध के संग माया ते पैन
1: साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न
0: साध संग दुश्मन सब मीत
1: साधु के संग महापनीत
0: साध संग के सेव नहीं बैर
1: साध के संग न बीगा पैर
0: साध के संग नाही को मंदा
1: साध संग जाने परमानंदा
0: साध के संग नहीं हो ताप
1: साध के संग तजे सब आप
0: पे जाने साध बढ़ाई
1: नानक साध प्रभु बने आई
0: साध के संग ना कबहु तावे
1: साध के संग सदा सुख पावे
0: साध संग वास्त अगोचर लहे
1: साधु के संग अजर सहे
0: साध के संग बसे थान ऊंचे
1: साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़े सब तारव
1: साध के संग केवल पार ब्रह्म
0: साध के संग पाए नाम निदान
1: नानक साधु के करबान
0: साध के संग सब कुल उधारे
1: साध संग साजन बीत प्रण निस्तारे
0: साधु के संग तो था सोतन पावे
1: जिस तन ते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा
1: साध के संग शोभा सुर देवा
0: साधु के संग पाप पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गाम
1: नानक साध के संग समल जनाम
0: साध के संग नहीं कछ काल
1: दर्शन पेट तो होत निहाल
0: साध के संग कलुखत खरे
1: साध के संग नरक पर हरे
0: साध के संग इहा उहा सहेला
1: साध संग विचरत हर बेला
0: इच्छे सोई फल पावे
1: साध के संग न व्यर्था जावे
0: हर ब्रह्म साध रिद वसे
1: नानक उतरे साध सुन रसे
0: साध के संग सुनो हर नाओ
1: साध संग हर के गुण गाओ
0: साध के संग न मन ते विसरे
1: साध संग सर पर निस्तरे
0: साध के संग लगे प्रभ मीठा
1: साधु के संग कट कट गेठा
0: साध संग पाए आज्ञाकारी
1: साध संगत पई हमारी
0: साध के संग मिटे सब रोग।

0: ज्ञानी सगल की रीना
1: आत्म रसवत ज्ञानी चीना
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पिया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल योगता।

0: सुख सहज निवास,
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश।
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता,
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता।
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत,
1: ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत्र।
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रवाप,
1: ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप।
0: ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाइये,
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए।
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर।

0: मित कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता।

0: करन करावन करने जोग
1: जो तुस पावे सोई होग
0: खिन में थापे थाप नहारा
1: अंत नहीं किछ पारा बारा
0: हुक्मे तार अतार रहावे
1: हुक्मे उपजे हुक्म सुहावे
0: हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार
1: हुक्मे अनेक रंग प्रकार
0: कर कर देखे अपनी बड़ियाई
1: नानक सब में रिहा समाई
0: प्रभावे मान गत पावे
1: प्रभावे ता पाथर थरावे
0: प्रभावे मिन सास ते राखे
1: प्रभावे ता हर गुण पाखे
0: प्रभावे ता पत धारे
1: आप करे अपने विचारे
0: दोहा सिरा का आप

0: करे अहंकार,
1: नारक स्वर्ग फेर फेरे अवतार,
0: अनक जतन कर आता नहीं द्रवे,
1: हर दरगे को कैसे दवे,
0: आपस को जो भला कहावे,
1: तिसे भलाई एक नावे,
0: सारुकी रेन जहाँ का मन होए,
1: कौ नानक ताकी निर्मल सोए,
0: जब लग जाने मुझते कश होए,
1: तब

0: जगत पाई,
1: संत का निंद कमा अति ताई,
0: संत का निंद घंटे करना पाई,
1: संत का निंद कमा हत्यारा,
0: संत का निंद परमेश्वर मारा,
1: संत का निंद राज देहीन,
0: संत का निंद

0: जन्म था
1: गीते जन जग माहे
0: सदा सदा हरके गुण गाए
1: राम नाम जो करे विचार
0: से तन अंत गनी संसार
1: तन मुख बोले हर मुखी
0: सदा सदा जान्यो ते सुखी
1: को एक एक पछाने
0: यतत कियो सो जी जाने
1: नाम संग जिसका मन मान्या
0: नानक तिन्हे निरंजन जानिया
1: प्रसाद अपन आप सूझे
0: जिसकी जानो तृष्णा बुझे
1: संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग ते वरन
1: जन कीर्तन केवल बखियान
0: गृहस्थ में सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जिस जन की आशा
0: जिसकी कटके जम की फासा
1: ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक जिसे न लागे।

0: साथ ऐसा दृष्टाया
1: अपने काज में आप समाया
0: सोदत सीचिया
1: गुर प्रसाद तत् सब पूजिया
0: देखो तब सब किछ मूल
1: नानक सो सुखम सोई अस्थूल
0: किस जन्मे न किस मरे
1: आपन चलता आप ही करे
0: आवण जाम दृष्ट दृष्ट
1: आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ
0: पे आप सगल में आप
1: अनेक जुग तरच थाप थाप
0: विनाशी नाही किस खांड
1: तारन तारे हो ब्रह्मांड
0: पे परख प्रताप
1: आप जपाए नानक जाप
0: प्रभ जाता सो सुभावंत
1: सब संसार उदरे तिन मंत
0: के सेवक सगल उदारण
1: प्रभ के सेवक दुख बिसारन
0: पे मेल लय कृपाल
1: गुर का शब्द पय निहाल
0: की सेवा सोई लागे
1: जिसनो कृपा करे बड़ भागे
0: नाम जपत पावे विश्राम
1: नानक तिन गुर को उत्तम कर मान
0: कुछ करे सब प्रभ के रंग
1: स

0: संते संग चाल
1: अमर त्याग लिखिया जंजाल
0: तन तन कह सब कोए
1: मुख उजल हरदा के सोए
0: बापार बिरला बापार
1: नानक ताके सत बलिहारे
0: चरण साध के धोए धोए पियो
1: हर प्रसाद को अपना जियो
0: साध की धूर करो इशनान
1: साध ऊपर जाइए करबान
0: साध सेवा वड भागी पाइये
1: साध संग हर कीर्तन गाइये
0: अनक विघंते साधु राखे
1: हर गुण गाए अमृत रस चाखे
0: कोट कही संत

0: सिखो जी नाल संभारे।
1: गृह से भुक जो रहे
0: गुर की आज्ञा मन में सहे,
1: उसको कर कछ न जनावे,
0: हर हर नाम हृदय सत्य आवे,
1: बेचे सत गुर के पास,
0: तिस सेवक के कार्य रास,
1: करत होए नह कामे,
0: तिसको होत प्राप्त स्वामी,
1: अपनी कृपा जिस आप करे,
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले,
1: विश्व विश्व गुर का मन माने,
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने,
1: सत गुर जिस हृदय हर नाव।

0: संत जना मिल कहो विचार,
1: एक सिमर नाम आधार,
0: और पापसा मीत बसारो,
1: चरण कमल हृदय में और तारो,
0: कारण कारण सो प्रभ समर्थ,
1: जिनका कहो नाम हर वक्त,
0: एहो तन संचो हो भगवंत।

0: मन भिक्षे सात जन धोए
1: भक्त जना के मन तन रंग
0: गल्ला को पावे संग
1: एक वस्त दीजे करमया
0: गुर प्रसाद नाम जप लिया
1: ताकि उपमा कही न जाए
0: नानक रहा सर्व समाए
1: प्रभु भगसंद दीन दयाल
0: भक्त बचन सदा कर पाल
1: अनाथ

0: भगवान
1: सार्वभौमकंठ मुक्त मोक्ष पाए
0: एक निरंकार के गुण गाए
1: अनक राज भोग वढाई
0: हर के नाम की कथा मन पाई
1: भोजन का पर संगीत
0: रसना जपती हर हर नीत
1: परिसो करनी शोभा तनवांत।

0: तब कमन माई बाप मित्र सुत्र भाई तय वेद कदेव कहा को चीन सगन सगन कहा विचारे
1: अपन आप नेरा
0: तय कौन ठाकर कौन

0: प्रभति।
1: आप कथे आप सुनने हार
0: आपे एकाभिसार
1: तिस पावे ता सिष्ट अपाए
0: आपने पाने रहे समाए
1: ते पैन नहीं किश होए
0: आपन सुसा जगत पर होए
1: आप बजाए
0: सच नाम सोई जन पाए
1: समदासी तत् का बेता
0: नानक सगल श्रेष्ठ का जेता
1: जंतर सब ताके हाथ
0: दीन दयाल नाथ को नाथ
1: के तस कोए न मारे
0: सो मुआ जिस मनो बसारे
1: अवर कहा को जाए
0: सब सर एक निरंजन राए
1: जगत जाके सब हाथ
0: अंतर बार जानो साथ
1: दान बेअंत अपार
0: नानक दास सदा बलिहार
1: पूर रहे दयाल
0: सब ऊपर होवत कर पार
1: अपने कर्तव जाने आप
0: अंतर जामी रहो व्याप
1: पाले जीवन बोपात
0: जो जो रचो सो तिसे ध्यात
1: पावित सलय मिलाए
0: पवित करे हर के गुण गाए
1: अंतर विश्वास कर मान्या
0: कर्ण हार नानक के जानिया
1: लागा हर एक के नाए
0: तिसकी आस न व्यथी जाए
1: सेवा बने आई
0: हुक्म बूझ परम पद पाई
1: इसके ऊपर नहीं विचार
0: जाके मन बसिया निरंकार
1: दन तोर पे निर्भर
0: आंदन पूजे गुर के पैर
1: परलोक सहेले
0: नानक हर प्रभु आपे मिले
1: संग मिलकर आनंद
0: गुण गा

0: दर्शन श्रेष्ठ
1: कमल जाके अनूप
0: सफल दर्शन सुंदर रूप
1: सेवा सेवक परमान
0: अंतर्यामी प्रदान
1: मन बसे सहूत निहाल।

0: अग्होत्रांग
1: संत जना के तूर मन भंग
0: आप छोड़ बेनती करह
1: सा संग अगन सागर करो
0: बर्तन के परले हो पंडार
1: नानक और पूरे नमस्कार
0: हेम कुशल सहज आनंद
1: सा संग परज परमानंद
0: नरक निवार उधारो जियो
1: गुण गोविंद अमृत रस पियो
0: चित चितवो नारायण एक
1: एक रूप जाके रंग अनेक
0: लाल दमोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कर पाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का ये आधार
0: उत्तम श्लोक साध के वचन
1: अमलीक लाल रतन
0: संत कमावत होत उधार
1: आप करे लोक के निस्तार
0: सफल जीवन सफलता